0: national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज
2: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड ऑफ होल्डिंग द लाइन When it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज
2: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड ऑफ होल्डिंग द लाइन When it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: NDTV, when it really matters.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.

0: holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज

0: At least I left my state by my choice.
1: देखिए कुछ समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझ करके इस प्रकार की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स करते हैं। उसके पीछे उनका मकसद केवल और केवल प्रसिद्धि पाना है। और अब हमें तय करना होगा कि सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता या कश्मीरी पंडित, ये सारे मजाक का विषय नहीं बन सकते। तुम पहले कुछ भी करोगे, बाद में कहोगे मैं माफ़ी मांग रहे, उसके बीच में जो भी ने पब्लिसिटी चाहिए फ्री में पूरे देश पर में मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक मंच से कड़ा शासन हो।
2: शो में ये जबान इस्तेमाल की गई है, ये निंदनीय है, ये काबिल एतराज है, ये किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं है। देखिए कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित सदियों से जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर में रह रहा और इस तरह से पाकिस्तान की साजिश का शिकार हुआ, जानबूझकर उनको निकाला गया और एक खास सिस्टम यहाँ अडाप्ट कराने की कोशिश की गई, उसका जो मारा कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीरी पंडित आज भी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। और उसकी उस बेबसी और उसका जो पलायन हुआ, उस पलायन को फिर मजाक कहना या उस पर तनज करना, मैं नहीं समझता हूँ भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई एहतराम या रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये बॉर्ड कहे, शरू ने जो बॉर्ड कहे, उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए।
3: इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ मैन हु हिमसेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ एथनिक क्लींजिंग एंड जेनोसाइड trivializes the ethnic cleansing of his community. It is very unfortunate that he makes mockery of the hardworking people of this country, all for few eyeballs, few moments of fame, few likes. He has no business, Samay has no business to make mockery or the pain for the people who have been living in exile for the last 36 years, who are still awaiting justice, who have been victim of genocide and ethnic cleansing.
4: जो ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मुल्क भर में कि इन्हें वहाँ से किस तरह से निकाला गया, किन हालात में निकाला गया, हमें पता है कि कश्मीरी पंडित जब यहाँ से चले गए या उन्हें चलवाया गया, जो भी उस वक्त के हेलम ऑफ अफेयर्स में लोग थे उन्हें पता है कि उस वक्त की सिचुएशन को कैसे डील किया जा सकता था। और उस वक्त अगर ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ चले गए हैं तो उनको स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में या बाकी किसी जगह से अगर इस तरह से ताने सुनने को मिलते हैं तो मुझे बड़ी अफसरदगी है। हमें आज भी इस बयान पर कायम दायम है कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन, जम्मू कश्मीर का माहौल कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, नामुकम्मल है।
5: ये इस तरीके से किसी कौम, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की को उपहास के तौर पर दर्शाना ये निंदनीय है। आप अपने कॉमेडी के गुण का दुरुपयोग कर रहे हैं। कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए, तो आप अपनी कॉमेडी का अस्त्र का उपयोग किसी बिहार को या किसी को और बिहारियों को है? अरे ये भी तो आप कह सकते हैं कॉमेडी में कि ये बिहारी हैं जिनकी वजह से सारे उत्तरी भारत तो छोड़िए दक्षिणी भारत में भी निर्माण कार्य खड़े हुए हैं है? ये वहाँ का श्रमिक है, उसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। कश्मीर के लोग हमारे सिरमौर हैं है? हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति है। और तो आप उनका मजाक उड़ाएं तो ये उचित नहीं है। ये इस तरीके से किसी कौम, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की को उपहास के तौर पर दर्शाना ये निंदनीय है। आप अपने कॉमेडी के गुण का दुरुपयोग कर रहे हैं।
6: All right, Pradeep Dutta is joining us on the broadcast. Pradeep, the condemnation is now just not from the Kashmiri pundits. In fact, it's from the political forums as well. The BJP, the Congress, and even the Kashmiri pundits now have all come out in condemnation together, uniting and saying that these kind of remarks are not to be said out in public forum and that comedians cannot hide behind the disguise of freedom of speech.
7: Yes, you're absolutely right. In fact, condemnation pouring from across the country. And once again, Samir Raina has landed in trouble because job of a good comedian is always to draw a line between derogatory remark and satire. And if you cross the line, you are bound to land in trouble. That is exactly what has happened with Samir Raina. He questioned the Bihari identity of the participant and the participant hit back at him, trying to mock and insult the pain of the Kashmiri Pandits who had to abandon their hearths and home in the early 90s because the park sponsored terrorism. So that's one of the reasons that the people are questioning, especially the members from his own community. They are saying that you are the one from the Kashmiri Pandit community, you very well understand plight and pain of the community. How come you make a fun and of the pain and plight of the Kashmiri Hindus? And you, how come you mock at a hard-working Bihari community that is contributing not only economy but also development of the country? So you have no right and license to hit, mock out or insult any community. So that's why there is an anger, there is an ire, there is an agitation, and this is not first time he has landed in trouble. Earlier also, there were several FIRs lodged against him. Finally, he had apologized, but people feel that he had become a habitual offender. He always apologizes, gets away with the thing. But this time, they want that he should be taught a lesson.
6: Right, absolutely. Thank you very much, Pradeep, for getting us those details. Let's talk about another controversy that's unfolding. Sonia Gandhi's memoir, Belonging, has hit a major publishing hurdle, with Penguin India saying it will not publish the book. According to Congress sources, the objection centers on three sensitive themes. Number one being China's border incursion, second being Prime Minister Modi's policy, and the third being RSS's political influence. Now, Congress's Ashok Gehlot has called the episode a murder of democracy and questioned as to why the truth should be hidden from Indians. Official Kerala Congress and NSCOI handles have posted posters taking a dig at Penguin India, alleging that the publisher caved under pressure. But Penguin has a different version. They say that the fact-checking is a normal part of the publishing process and that it remained willing and keen to publish the book. Meanwhile, what's also happened is that the BJP has slammed the Congress and said that they are spreading false narratives of fear.
8: Penguin India ne jis prakar se achanak hi ek author Sonia ji, जिसका जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 10 नवंबर को वो प्रकाशित होगी पुस्तक, पूरे देश के अंदर एक इंतज़ार होने लग गया कब पुस्तक आएगी। अचानक ये खबर आई जिससे बहुत सबको धक्का लगा कि पेंजिन इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड वाइड, वो तैयार छापने के लिए पुस्तक को। तो क्या कारण है कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है वो इंडिया में छापने के लिए तैयार नहीं है? कोई इनको दबाव है?
9: लेखक और प्रकाशक के बीच में कहीं किसी तरह का अंतर विरोध हो? प्रकाशक का अपना प्रेरोगेटिव है, लेखक का अपना व्यू पॉइंट है। मुझे लगता है उसको राजनीति में लाने के बजाय प्रकाशक
6: Joining us on the broadcast for more details, Aishwarya, what is it that the Penguin Publishing Book House has released as a statement, and what is the way going forward now? Will the book be published finally, or is it going to go with some uncuts?
10: Well, there are hurdles amid the statement that are coming from Penguin India, but yes, after that statement, there has been fresh political war of words that erupted between the Bharatiya Janata Party and the Congress. It is the BJP leaders which have alleged that it is, pressure from the Congress, perhaps, had alleged that it is pressure from the government and threat to freedom of expression. The Bharatiya Janata Party, on the other side, categorically has challenged the claims and questioned the contents of the book. It is senior BJP leaders who have stated that whether the book written by Sonia Gandhi is a memoir or a fiction is a matter to be decided between the author and the publisher. And if a work is labeled as a memoir, then it turns out to be fiction. So it is up to the publisher and the author that has to be decided. And therefore, the reason perhaps now, it all depends on how the publisher wants to go ahead. But yes, fresh war of words over three flashpoints that have erupted on Sonia Gandhi's memoir.
6: All right, Aishwarya, thank you very much for getting us those details. Moving on, Rahul Gandhi has hit out at BJP and RSS over purification ritual conducted at venue after Congress President Mallikarjun Kharge has delivered his speech in Uttarakhand. Now, Rahul Gandhi has demanded that an FIR should be registered against the SCST Act. He's also targeted the Prime Minister over the issue, questioning that the BJP's leadership response to the alleged ritual is questionable. He added that it is the duty of both the state government and the central government to ensure that Kharge ji receives the justice in Uttarakhand.

0: हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।
1: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को कि ये खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड बना दिया है, ये खड़गे जी हिसाब से समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ वो होना नहीं चाहिए।
2: चिंता कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाहिर की कि किस तरीके से आज भी दलितों के साथ भेदभाव किए जाते हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी देने का काम किया। आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं।
3: With that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

वाजवा की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लेकिन मुश्किल ये पूरी जर्नी है। कहा जा रहा है कि अभी और हमको 4 घंटे लगेंगे, हम ऑलरेडी 3 घंटे का सफर कर चुके हैं। और ये देखिए सड़कें कहीं टूटी हुई हैं, इतनी घुमावदार है, और 4-व्हील ड्राइव नहीं हो तो कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो तमाम चुनौतियों के साथ देखिए आगे रिलीफ की छोटी छोटी पिकअप वैन्स आगे जा रही हैं, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो क्लब्स हैं, यूथ क्लब्स हैं, वो इस

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
7: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
7: 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: देखिए, नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब। व्हाट टाइम इज द मेडल सेरेमनी?
10: द मेडल सेरेमनी बिगिंस एट 6:30 पीएम।
11: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
12: Kia. Movement that inspires.

ये कहानी है एक लड़के की, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस लड़के की, जिसके पास था तो बस माता पिता का आशीर्वाद, जो 16 साल की उम्र में ही अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचा नौकरी की तलाश में। इसने हर ठोकर को आने वाली जीत की सीढ़ी में बदल दिया। एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रा

0: स्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया। और अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने वाले इस शख्सियत का नाम है गौतम अदाणी। गौतम अदाणी जी का हमेशा से विश्वास रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग हैं।
1: I have always believed that if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
0: गौतम अदाणी के इस एक काबिल सपने को देश ने अवसर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिली। अब वे अपने जैसे अनेक काबिल सपनों को ग्रास रूट से उठाकर देश के निर्माता बनाना चाहते हैं। मजबूरियों और हालातों की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशना चाहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 24 जून को शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम।

अपने विजन और मिशन की गंभीरता का प्रमाण देते हुए गौतम अदानी ने टाइम कैप्सूल में अपने कमिटमेंट की चिट्ठी रखी। कमिटमेंट है वंदे भारतम का, देश के ग्रास रूट के सपनों को करोड़ों की सहायता देने का और इस राष्ट्रीय धरोहर को पूरे वर्ष लगातार जारी रखने का। इसी लक्ष्य के साथ पोर्टल बना, कैटेगरीज बनी, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। 12 भाषाओं में चलाया गया ये कैंपेन गांव गांव तक पहुंचा। वंदे भारतम वैन ने कॉलेजों और स्कूलों से लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को वंदे भारतम के मिशन से परिचित कराया। नेक इरादों को देश भर की लीडरशिप का भी समर्थन मिला। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, कैबिनेट मिनिस्टर्स और वरिष्ठ अधिकारियों ने वंदे भारतम को सराहा। सोशल मीडिया पर वंदे भारतम के इंस्पायरिंग वीडियोस को 41 करोड़ से अधिक बार देखा गया और 82 करोड़ से अधिक इंप्रेशंस आए। तभी तो एक महीने में ही 26,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आईं, वो भी इन विभिन्न कैटेगरीज में जो आज के भारत की हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। 4,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स ने वीडियो पिचेस भेजी। AI और मैनुअल इवैल्यूएशन के माध्यम से 26,000 में से 1,000 एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट हुई। इन 1,000 एप्लीकेशंस का हमारे मेंटर्स के बीच 10-10 मिनट के डिस्कशंस हुए, जिसके बाद 200 इनोवेटर्स चुने गए। IIT, IIM के प्रोफेसर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की 30-30 मिनट की कॉल्स के बाद सिलेक्टेड फाइनलिस्ट्स अहमदाबाद पहुंचे। 9 अगस्त को अहमदाबाद के शांतिग्राम में एक शानदार बूट कैंप आयोजित

0: ये रिस्पॉन्स सिर्फ एक टीवी शो की टीआरपी नहीं था, टीआरपी का हमारे लिए मतलब है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड प्राइड। 10 से 13 अगस्त के बीच वंदे भारतम का स्टेज इनोवेशन के स्टार्स से जगमगा उठा।
1: हम कंस्ट्रक्शन को फास्ट, बेटर और मोर सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं।
2: कर लो आसमान मुट्ठी में।
0: नए भारत की उद्यमिता के पहचान बने 20 दिग्गज मेंटर्स देने वाले हैं इस नई राष्ट्रीय धरोहर को आकार।
3: वो दिन यही है वंदे भारतम, वो दिन यही है वंदे भारतम।
0: इसी मंच से टॉप विनर्स को मिलेगी करोड़ों की प्राइज मनी और इसी मंच से होंगी करोड़ों की डील्स। साथ ही हमारी स्पेशल कैटेगरीज विमेन, रूरल, दिव्यांग, सस्टेनेबल को दी जाएगी स्पेशल प्राइज मनी भी। आइए आत्मविश्वास के इस मंच से सपनों का टेक ऑफ करते हैं।
3: यही है वंदे भारतम,
0: वंदे भारतम,
3: यही है वंदे भारतम।
0: अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार इस बार, तो निराश ना होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, जुड़ो और पाओ योग्य निवेश, मेंटर या अडानी ग्रुप का सहयोग। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती हैं। और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है, तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। सभी पिचेस के अनप्लग्ड वर्जन्स अब वंदे भारतम और NDTV के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आइए एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं हमारे एम्बेसडर और होस्ट राजीव खंडेलवाल के साथ, जो आज करेंगे इस 10 एपिसोड्स की शानदार सीरीज की शुभ शुरुआत।
4: आइडिया छोटा हो सकता है, पर सोच और जज्बा बड़ा होना चाहिए। और इसी इंस्पायरिंग सोच को सपोर्ट करने के लिए मैं आपका दोस्त राजीव खंडेलवाल लेकर आया हूँ वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय मिस्टर गौतम अदानी। एक ऐसा मंच जहाँ भारत के हर छोटे शहर, गांव, किचन और क्लासरूम से आने वाले बड़े सपनों को पहचान और उड़ान मिलेगी। एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ हमारे इनोवेटर्स तैयार हैं इस मंच पर अपने आइडियाज देश और मेंटोर्स के सामने रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं इस शो का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। एक एक करके हमारे इनोवेटर्स आएंगे और अपना विजन और आस्क मेंटोर्स के सामने रखेंगे। अगर मेंटोर्स को इनोवेटर्स के बिजनेस या उनके आइडियाज में पोटेंशियल नजर आता है, तो वो हमारे इनोवेटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुभारंभ के इस लिफाफे के साथ यहीं से होगी एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत। अगर किसी इनोवेटर की पिच स्टोरी या उनका स्ट्रगल मेंटोर्स के दिल को छू जाता है, तो वो उन्हें दे सकते हैं हमारे वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी 10 डेज मेंटोरशिप विद अदानी ग्रुप। हर पिच के बाद हमारे मेंटोर्स इनोवेटर्स को अपना स्कोर देंगे और वो जाएंगे हमारे वंदे भारतम वॉल्ट में। महामंच यानी फिनाले एपिसोड में इन स्कोर्स के द्वारा हमें मिलेंगे हमारे टॉप 5 इनोवेटर्स, जिन्हें मिलेगा एक ग्रैंड कैश प्राइज।
3: वंदे भारतम, भारतम, वंदे भारतम।
4: आज वंदे भारतम के मंच पर इनोवेटर्स के साथ आएंगे मार्केट के वो दिग्गज जिनको गौतम अदानी जी ने खुद चुना है। आज अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आए हैं हमारे इनोवेटर्स को एनकरेज करने के लिए। चलिए मैं आपको हमारे आज के मेंटोर से मिलवा देता हूँ। ये ज्योतिष शास्त्र को मानते नहीं थे, पर आज टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा संगम चला रहे हैं। प्लीज वेलकम द मैन हु रीरोट हिज ओन डेस्टिनी, फाउंडर एंड CEO ऑफ एस्ट्रोटॉक, मिस्टर पुनीत गुप्ता। हाय पुनीत, good to have you here.
5: Please, have a seat. Here.
4: जिन हाथों ने कभी बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स, ओला और बुक माई शो जैसे जायंट कंपनीज के फाइनेंस को संभाला, आज वही हाथ सैकड़ों फाउंडर्स के सपनों को दिशा दे रहे हैं। 23,000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क बनाने वाले हमारे अगले मेंटोर, उनका स्वागत कीजिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को फाउंडर मिस्टर नितेश शाह। नितेश भाई, स्वागत है आपका।
6: थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू फॉर कमिंग।
6: प्रिविलेज टू बी हियर।
4: प्लीज। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इन्होंने उस शॉपिंग को कमाई में बदल दिया। करोड़ों भारतीयों को स्मार्ट शॉपिंग का नया तरीका सिखाया, हजारों लोगों को अर्न करो के जरिए रोजगार का नया रास्ता दिखाने वाली कैश करो और अर्न करो की को फाउंडर, प्लीज वेलकम स्वाति भार्गवा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो।
2: थैंक यू,
4: प्लीज हैव अ सीट। आ रहे हैं हमारे स्पेशल मेंटोर। एक वक्त था जब लोग सिर्फ बड़े फॉरेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदते थे, फिर एक एंटरप्रेन्योर आया जिसने कहा हम भी बना देंगे, और आज 12,000 करोड़ से ज्यादा की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बना ली। प्लीज वेलकम इंडिया के नंबर 1 ऑडियो ब्रांड और दुनिया के 1 ऑफ द टॉप 5

0: आई वेयरेबल ब्रांड बोट के को फाउंडर मिस्टर अमन गुप्ता। हाय अमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट। नाम विरासत दे सकता है लेकिन नई सोच, नई एनर्जी और नए नजरिए के साथ उसे आसमान तक ले जाना ये इन्होंने कर दिखाया। एयरपोर्ट्स को सिर्फ लैंडिंग एरिया नहीं, प्रोग्रेस का रनवे माना। ये हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदलने का जज्बा रखते हैं। गूगल के साथ $15 बिलियन की एआई पार्टनरशिप क्रैक करने वाले, एयरपोर्ट्स और एआई ड्रिवन भारत के विजन की कमान संभालने वाले, प्लीज वेलकम द यंगेस्ट सेकेंड जनरेशन चेंज मेकर ऑफ अदानी फैमिली, मिस्टर जीत अदानी। Hi, Jeet. Thank you so much for taking out the time and coming here.
1: Absolutely.
0: Please have a seat. So good to have all five of you here. Thank you so much for coming. Jeet, आपके फादर जो हैं, उनका ये सपना था कि एक ऐसा मंच तैयार हो वंदे भारतम, जहाँ पर प्रोत्साहन मिले उन स्टार्टअप्स को जिन्हें मौका नहीं मिलता। ये मंच उनको यहाँ पर इनवाइट कर रहा है जो कि छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में जहाँ पर बसे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर कि आपके फादर का वो सपना और अब धीरे धीरे फाइनली रंग ला रहा है?
2: इट्स डेफिनेटली वेरी हार्टनिंग टू सी। वो ऑलवेज एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड रहे, तो उन्होंने जो सोचा है वो ऑलवेज हो गया है। तो फर्स्ट टाइम यू नो आई एम सीइंग दैट फ्रॉम अ यू नो सॉफ्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो उनका एक सपना था कि पूरे देश के कोने कोने से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को कैसे एक स्टेज पे ला सके और उनको कैसे सपोर्ट कर सके, आई एम सीइंग दैट लाइव नाउ एंड यू नो वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट्स गोइंग टू कम टुडे।
0: तो वन पर्सनल क्वेश्चन है कि इतने बिजी होंगे गौतम सर, तो क्या उन्हें वक्त मिलेगा यहाँ पे इस शो के बारे में अपडेट्स लेने का कि क्या चल रहा है, कौन कौन आ रहा है, क्या होगा?
2: आपको लगता है वो बिजी है लेकिन ही इज ऑलवेज अपडेटेड टू द मिनट अबाउट एवरी सिंगल, so he's definitely going to be updated what's going on here.
0: You think that somewhere he may just be watching this?
2: Yeah, and wo pura show bhi aaj follow karne wala hai.
0: Kya baat hai, to let's see that jitne bhi yahan pe innovators aane wale hain, main aapko bata dun ki ho sakta hai ki kahin na kahin khud Gautam Adani ji aapki presentations ko dekh rahe ho. So wish you all the best to the innovators and thank you so much for coming here. Let's begin the show. जैसा कि आप सबने अपनी जिंदगी में किसी एक स्टेज पर किया होगा, जब आप अपनी पहली पिच लेकर गए होंगे तो वो जो फीलिंग्स आप लोगों के उस समय दिल में होगी, आपके जहन में होगी, एग्जैक्टली वैसी फीलिंग्स ना हमारे इनोवेटर्स की बाहर है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली उनका हाल क्या है। तन्वी, ओवर टू यू।
3: एक सेकंड, मैं आ गई, आ गई। मैं सुंदर तो दिख रही हूँ ना? नहीं, मैं टीवी पे आने वाली फाउंडर्स इनोवेटर्स अच्छी दिख रही हूँ ना? सबकी यहाँ पे आंखें मेडिटेशन में जा रही है, इतनी घबराहट हो रही है, मतलब अहमदाबाद के तापमान से बड़ा तापमान यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर है तन्वी आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके वॉर्म्थ के लिए, आपको बढ़ावा देने के लिए। सो हम रेडी है ऑन द काउंट ऑफ थ्री, वंदे वंदे वंदे, ऑल द बेस्ट इनोवेटर्स, rock the stage, the day is yours.
0: So mentors, अब जो हमारे innovators हमारे सामने आने वाले हैं, वो one of the youngest innovators, वो इतने young हैं कि उनके जो दोस्त हैं, वो उन्हें कहते हैं कि chill bro, पर वो कहते हैं कि chill ho.
3: Wow.
0: Please welcome the founders of chill ho.

0: मैं ध्रुव प्रताप सिंह चौहान, जयपुर राजस्थान से, और मैं अभी थर्ड ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में।
1: और मैं अथर्व योगेश जामरे, थोड़े महाराष्ट्र से, और मैं अभी इसके साथ सेम क्लास में पढ़ता हूँ।
2: सो बेसिकली हमेशा आप लोग चाहते थे कि हम लोग कुछ ऐसा सोचें जो बाकी लोगों ने नहीं किया, या ये जरूरत से पैदा हुआ?
1: हमारा एक कॉलेज का भी प्रोजेक्ट था जिसमें हमको एक परफ्यूम ब्रांड बेचना था एज अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट। उसी से हमारी शुरुआत हुई एंटरप्रेन्योरशिप की। सो वी सोल्ड आउट विद इन 3 आवर्स। इसलिए हमको तो पता चला कि there's something we can do in this, and तब से हमारा चल रहा था कि कुछ ना कुछ इस सेक्टर में करना है।
2: आप लोगों को देख के लगता है एक्चुअली हमारे देश का जो भविष्य है वो वाकई बहुत उज्जवल है, बिकॉज यंगस्टर्स लाइक यू हैव द पोटेंशियल टू एक्चुअली चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। आप लोग अपनी पिच के साथ तैयार हैं?
1: या
2: करेक्ट। 3 मिनट आपके पास में, और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
1: भाई बहुत गर्मी हो रही है यार।
0: हाँ यार, बहुत ज्यादा ही गर्मी है यार।
1: इस गर्मी का कोई सोल्यूशन है क्या?
0: यार क्या ही सोल्यूशन है यार, एसी में बैठ जाएंगे, ठंडा पानी पी लेंगे या कूलर चला लेंगे।
1: सही कहा। तो जजेस, ये है इंडिया के टॉप 3 मोस्ट यूज कूलिंग सोल्यूशंस। लेकिन इनकी एक ही दिक्कत है कि ये कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इंडियंस की एक खास बात बताऊं तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ लगा लेते हैं, जैसे कि पानी की बॉटल से ड्रिप इरिगेशन बना लिया, या फिर कोई साड़ी से शॉल बना लिया। और इसी गर्मी को टैकल करने के लिए इंडियंस ने निकाला एक गीला गमछा, उसे वो अपने गले पे लगाते हैं और ठंडा हो जाते हैं। लेकिन जो डिलीवरी ड्राइवर्स, फार्मर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, उन्हें 2 मेन दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, जो कि ऐसे 20 से 30 मिनट की कूलिंग और उनकी पूरी शर्ट गीली हो जाती है।
0: लेकिन अथर्व, यही एक प्रॉब्लम नहीं है। जजेस, आपके और मेरे पास तो एसी का प्रिविलेज है, लेकिन आप उन 38 करोड़ भारतीयों के बारे में सोचिए जो हर रोज 8 से 12 घंटे इस कड़ी धूप में निकलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पेट पाल सके और इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। और इसकी कीमत सिर्फ उनके पसीने में नहीं चुकती है, 12 से 4 के बीच में वो लोग काम ही नहीं करते। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, ये उनकी मजबूरी है गर्मी की वजह से, और इसका सीधा असर उनकी जेब पे पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की 2030 तक 4.5% GDP, जो कि है 150 से 250 बिलियन डॉलर्स, विलुप्त हो जाएगी। ये इंडिया की प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा लीक है जो आज तक छुपा हुआ था। हमारे दिमाग में यही आइडिया आया कि हम इस गीले गमछे के जुगाड़ को रिप्लेस करने के बजाय क्या हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं।
1: और इसी आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए हमने की कई महीनों की रिसर्च। बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद हमें मिला एक वायबल सोल्यूशन, और उसी सोल्यूशन को बनाने के लिए हम पहुंचे इसकी हॉस्टल की बालकनी में। उस बालकनी को हमने एक लैब बना दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे फेल्ड प्रोटोटाइप्स भी बने, लेकिन फिर हमारा बना एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट। हमने बनाया चिल होम।
0: चिल होम एक कूलिंग टॉवल है, ये पोजीशन है एज अ हीट प्रोटेक्टिव गियर और एन एडवांस गमछा। बस आपको इसको इस बॉटल से निकालना है, इसको ये पानी में डुबोना है, और इसको 1 मिनट तक डूबे रहने देना है आपको, थोड़ा सा और ऐसे करते रहना है। बस आपको इसको ऐसे निकालना है, कोई सा भी पानी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ गर्म पानी यूज़ कर रहा हूँ। आपको इसको एकदम निचोड़ लेना है अच्छे से, बस आपको इसको थोड़ी देर ऐसे झटकना है 2-3 बारी, और इसको अपनी गर्दन पे लगाना है। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा?
3: मॉडर्न गमछा
0: टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से इसमें पानी बहुत देर तक होल्ड रहता है, और जैसे ही हवा इंटरेक्ट करती है ये धीरे धीरे पानी छोड़ता है और आपको वो कूलिंग सेंसेशन देता है।
4: टॉवल का मटेरियल क्या है?
0: टॉवल इज माइक्रोफाइबर।
3: माइक्रोफाइबर
0: बेसिकली ये टेक्नोलॉजी और थोड़े बहुत हाइड्रेशन की वजह से किसी भी क्लॉथ पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है।
3: You guys are still in college?
0: Yeah, third year. So हम लोग अभी एक हफ्ते की छुट्टी लेके आए, attendance का थोड़ा सा सीन हो रखा
3: है। But it's great to see two young guys having innovated something that is a grassroot level problem.
5: Yeah.
3: It's not a fancy problem.
0: Thank you so much.
4: Yeah, I think at 20, what you guys are doing is good.
3: How long will it take you guys to scale up production?
1: We are planning to reach a 2 crore revenue by the next year,
0: 27-28.
1: Yeah.
0: So 2 crore revenue unse aayega. It is equal to 30,000 workers. Agar hum sirf delivery partners ki baat kare, so they are around 50 lakh delivery riders across all platforms in India. Aur sirf hum unme 30,000 bhi target kare, we will easily achieve the 2 crore revenue.
1: And this is just delivery drivers. So there's other markets like construction workers.
3: I was going to ask for construction
0: exactly.
3: workers.
0: Construction workers.
1: It's
0: farmers,
1: a bigger market bigger than market. Delivery drivers because it's way more. The numbers are way more.
3: Yeah.
1: And we can also target them.
3: And what do you need to do to increase your production in terms of capital,
0: yes.
3: resources, as well as what milestones do you guys have to hit?
0: That's why we have come here. We need funds. That is 1 crore. Because आधे से ज़्यादा फंड्स हमारे उसमें जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में और हमें थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी है सो वी कैन आइट्रेट एंड मेक इट वेरी गुड और अच्छा बना सके इसको
1: एंड आईपीएन सर्टिफिकेशंस के लिए थोड़ा फंड लगेगा
3: सो राइट नाउ इज योर इज इट पैटेंट प्रोटेक्टेड
1: प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड इज पेटेंटेड
3: ओके
2: एक चीज बताता हूँ कि आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जितना आप सोच रहे हो उससे
0: हाँ सर
2: यू नीड एनी मेंटरशिप आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन एंड 2 crore आपको लग रहा है ये 20 करोड़ भी बन सकता है अगला साल सो यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी आई एम ऑलवेज अवेलेबल
3: वी हैव अ कपल ऑफ लैक वर्कमैन वर्किंग एट डिफरेंट साइट्स इन वेरी हार्श कंडीशंस
0: या
3: एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट योर प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ देम थैंक यू
4: सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस
2: ये जो वंदे भारत का जो मंच है ना इसका जो दिल है वो ग्रास रूट में धड़कता है एंड यू हैव एक्चुअली कम अप विद समथिंग विच इज सो ग्रास रूट रिलेटेड थैंक यू सो मच हमारे इस प्लेटफॉर्म को इतना खूबसूरत बनाने के लिए सार्थक बनाने के लिए एंड टू गिव इट एक्चुअल द मीनिंग जो जिसके साथ में हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू की थी
0: सर
2: बट एक चीज और भी है जो मुझे मालूम है इनके बारे में बता दो
0: मैं ही बता देता
2: हूँ आप ही बता दो
0: बेसिकली मेरे डैड को नहीं पता है ये तो थोड़े से वो स्ट्रिक्ट है उनका ये है कि जॉब करो थोड़ा स्टेबल हो जाओ और ये सब मेरे में था कि नहीं यार ऐसे कुछ रिस्क लेना है और कुछ तो करना है सो डैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस और फिर कॉलेज में मैंने पूछा क्योंकि वही सबसे ईजी सोर्स है को फाउंडर्स और इनके लिए जिनसे आइडियोलॉजी मैच होती है तो 40-50 लोगों को पूछा उसमें से ये भी था उनका सबका ये था यार हमें तो या तो जॉब करनी है या हम कॉलेज के फेस्ट में बिजी है हमें वो करना है ये करना है इसने मुझे बोला भाई तू क्या बना रहा है मैंने बोला ये यार ये तो बहुत लोगों की हेल्प करेगा बोले हाँ बोले चल ठीक है मैं आ जाता हूँ तेरे साथ में अपन ट्राई करते हैं बस
2: पापा का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला ये तो बता दो पापा
0: बस उनको इसी चैनल के थ्रू पता चलेगा जब वो देखें
3: व्हाट वाज योर आस्क
0: 1 crore
3: आई विल डू इट
2: जी देख सेकंड दिस इज सच अ मोमेंट फॉर हिम
0: सो क्यूट
2: फॉर द प्लेटफॉर्म एंड फॉर हिज फादर बिकॉज इनके फादर को हमने वीडियो कॉल पे लिया है Let him witness. सर ये आपके बेटे हैं और ये जीत अदानी हैं और आपके बेटे का इन्होंने अभी आइडिया सुना और उन्होंने कहा कि इनकी अब पूरा सपोर्ट है इन दोनों को और इनके आइडिया को इनके इनोवेशन को नॉट जस्ट मेंटोरशिप बट फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने की ऐसी इच्छा रखते हैं जीत
5: थैंक यू सो मच
3: कीप बिलीविंग इन योर सन सर
5: आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गॉड कि इतना अच्छा मौका मिला इट कुड बी एवरी फादर वांट्स उसका बेटा सक्सेस हो आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा सो वेल डन
2: और
0: ये सब मैं अपनी मॉम को डेडिकेट करना चाहूँगा उनको मैंने ये आइडिया बताया था और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस पर उन्होंने बोला बस बेटा तू कर और आगे चालू हो जा बस और कुछ नहीं है बस
2: ये अभी का वंदे भारतम के मंच पर अभी समाप्त नहीं होता है क्योंकि अभी हो सकता है कि आप टॉप 5 फाइनलिस्ट में पहुंचे जहां आपको जीत के फादर जिस छोके जिसने कॉन्सेप्चुलाइज किया था जिसने विजुलाइज किया था श्री गौतम अदानी जी उनसे मिलने का मौका मिल सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप फाइनलिस्ट बने तो अपने पापा को जरूर साथ में लेके आइए
0: मैं मॉम और डैड दोनों को साथ में लेके आऊंगा फॉर श्योर
2: सुपर ऑल द बेस्ट डू वेरी वेल इन योर लाइफ कीप शाइनिंग
6: वेल डन
2: आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू जीत की क्या आपने रिलेट किया यू नो व्हेन यू स्टार्टेड बिकॉज़ यू स्टार्टेड वेरी यंग एंड यू सडनली सी टू यंग बॉयज हु जस्ट नीड सपोर्ट क्या कहीं वो एक इमोशनल फीलिंग भी आप?
3: No, 100%. I saw a little bit of myself in them. I remember my college days also when I was trying to figure out what project to do and blowing up a couple of projects also. So it's, you know, it's heartening to see two young guys who are, you know, so passionate about it and against all odds.
2: Yeah. And I'm saying, I'm nobody to say this, but I can see a very, very good, very, very fine leader in you. That was so nice of you to actually extend your support to them. That's fantastic. So scores, aapke ready hai?
1: Yeah.
4: Yes, sir.
2: वंदे भारतम जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप भी इनोवेटिव आइडियाज सोच सकते हैं।
6: फर्स्ट एवर फ्लशेबल एंड 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। तो ऐसा सैनिटरी पैड जो आप कहीं पे भी फ्लश कर दो।
7: यू वांट टू डू अ डेमो?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
9: Welcome back to Vande Bharatam. An initiative by Gautam Adani. All right, Swati, ये जो हमारी अगली innovator आ रही है यहाँ पर, उन्हें देखकर आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो एक female entrepreneur है।
10: Amazing.
9: दूसरी बात, जिस idea के साथ में वो आ रही है, that might make you smile even broader because you may just connect with that one.
10: Okay.
9: Please welcome the founders of Flossom. Hi, welcome, welcome.
10: Thank Hi. You. So nice to meet you.
9: Yeah, pleasure.
10: My name is Ranu. I'm a founder of Flossom. I basically chote se gaon se aati hu, which is called as Sangli. And Flossom ki story starts with me. First period cycle did not have any access to menstrual hygiene. So I thought in 8th standard ki mujhe yahi karna hai. And planned my corporate life, startup life, education, post graduation only around this. 15 years of corporate experience with P&G, Whisper में काम किया, Snapdeal में काम किया, Max Group में काम किया, Healthcare बना दिया, Ship Rocket में काम किया. ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ because these all industry taught me how to scale, how to innovate and be bold relentlessly.
11: Hello everyone, my name is Atesh. I am CBO, CEO at Flossom. Been part of this journey since very inception and really excited to be here.
9: Ranu and Hitesh, right?
10: Yes.
9: Ranu, आपने कहा आप एक बहुत छोटे से शहर से हैं, सांगली, महाराष्ट्र में पड़ता
10: है।
9: कमाल है, बताइए, मैं ये हमारे शो की खूबसूरती ये है कि हमारे शो के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं और इतने सॉलिड आइडियाज लेकर आ रहे हैं विच कैन एक्चुअली चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री।
10: टोटली सर।
9: आप दोनों फ्रेंड्स हैं?
10: Yes.
9: Friends?
10: So we started working together in Snapdeal. और चार साल इतनी लड़ाई करी कि पता चला कि सारे ऑपोजिट स्किल सेट थे। तो जब आइडिया पिच करी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो टिश्यू पेपर पे सेल हो गया था। एंड एक आई वांटेड अ मैन इन द मेंस्ट्रुएशन जो ऑपोजिट व्यू पॉइंट लेके आए, बिकॉज अगर मैं इसको कन्विंस कर सकती हूँ ना, तो आई एम श्योर बाकी लोगों को कन्विंस कर लूंगी।
9: रेडी हैं आप लोग?
10: डेफिनेटली।
9: आपके पास में 3 मिनट है और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
10: डेफिनेटली, थैंक यू।
11: रानो, ये क्या छुपा रखा है?
10: कुछ भी नहीं।
11: अरे बताओ बताओ।
10: कुछ भी नहीं, बट आई एम श्योर यहाँ पे जो बैठा है ना, सबको पता चल चुका है कि मेरे हाथ में है क्या।
11: एग्जैक्टली, अ वुमन्स जर्नी टू डिस्पोज ऑफ अ पैड, एक्चुअली डिस्पोज ऑफ अ यूज्ड पैड इज लॉन्गर देन व्हाट यू थिंक।
10: पहले पैड यूज करो, फिर उसको रिलीज पेपर लगाओ, न्यूज पेपर लगाओ, देन द नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट। डस्टबिन ढूंढो, डस्टबिन हो सकता है बालकनी में, टेरेस में, किचन में जाके डिस्पोज करो। Just imagine how longer the process is. So what we decided is that to solve this problem totally, we did 17,000 consumer research. ठीक है? फिर पता चला कि 3 buckets में problem divide हो रही है. First, India में only 40% of people are using sanitary pads. Just imagine after so many evolvement of the cultures. Second, one pad takes about 800 plus years to decompose. And third, 1 out of 3 menstruators जिससे हमने बात करी ना, वो अपना पैड यूज पैड मोस्टली घर आके फेंक रहा है। बिकॉज वी ऑल नो पीरियड ब्लड इज इम्प्योर, लॉट्स ऑफ मिथ्स एंड टैबूज अराउंड पीरियड ब्लड, सो ये सब चीजें बकेट हो रही है। सो व्हाट वी थॉट, लेट्स क्रिएट फर्स्ट एवर फ्लशेबल एंड 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। सो ऐसा सैनिटरी पैड जो आप कहीं पे भी फ्लश करो।

0: the beauty is that biodegradability, jo global benchmark hai 180 days ka, we've got it down to 28 days. So as a consumer, if you're not comfortable flushing it off, आप डिस्कार्ड कर दो, वो ऑटो डिसइंफेक्ट होएगा इन 28 डेज।
1: तो मतलब यूज करो और फ्लश करो।
0: फ्लश करो, फ्लश करो, फ्लश करो। ये पूरी जर्नी में ना 28 साल, we got validated by Ministry of Textiles। तो पहली ग्रेड ग्रांट आ गई, जिससे थोड़ा पुश आ गया।
1: We are Flossom, we are smarter, sustainable, awesome Flossom.
0: Awesome Flossom. Amazing.
2: Very impressive.
3: So Ranu, firstly, I love the name. I think Flossom is such a nice name actually. And मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि एक सांगली की लड़की IIT IIM में पढ़ने के बाद with support as well, but she is actually looking at a problem that really needs looking into. This is a very big problem and जो ये pads biodegradable नहीं होते ना, that actually contributes to the plastic waste of the environment and is doing so much damage. So I'm glad that at least I discovered you today. So I want to know a little bit more about the biodegradability and the flushability aspects of your product. You want to do a demo?
1: So I'm just cutting half of a regular pad and a flushable pad. I'll dip both of it.
0: This is a regular pad.
3: Oh, it's like tissue only, then the way the tissue goes
0: it's
3: in
0: breaking
3: it.
0: Down.
3: Yeah.
1: So this is 1/10 of the actual pressure of a toilet, to be very precise. The normal pad won't disintegrate anyhow, no matter how much the pressure is. Even if it passes through somehow, it will eventually clog the whole pipeline.
0: We created tissue papers,
1: yes.
0: Toilet seat covers, wet wipes, dry wipes,
1: so we can
0: everything flushable.
1: Yeah.
0: Ye ek wet wipe hai.
1: Same material, say.
0: Want to do this?
1: Actually, we did the harder part first. Pad ban gaya tha, toh ek layer se tissue paper banana zyada asaan tha.
4: So while you're doing this, amongst the competitors, nobody is actually focusing on the sustainability aspect.
0: Sir, we got approached by competition actually.
4: Okay.
0: So this is like broken now, like totally. ये खत्म होया.
2: Wow. Patent है आपके पास?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी. So we've got Indian patent. We also applied for PCT.
4: Nice.
0: Because Noon.com, Noon Minute से हमें PO आ रहे
2: हैं. सही है. बहुत सही है।
5: Tell me one thing, one of the concerns people normally have with full textile pads is leakage.
0: हाँ हाँ।
5: So how do you address that with your product?
0: Sir, so BIS 5405 के certain guidelines होते हैं कि pad ने इतना तो tick off करना चाहिए। तो Flossom exceeds all the parameters. So what are we trying to sell is that rash free होएगा, leakage नहीं होएगा, absorption amazing होगा. The byproduct is flushable. I'm not trying to sell sustainability. It should be a convenience feature. Yeah. ये तो है ही.
6: इसका price as compared to normal pad?
0: So Flossom regular is benchmark with our newest brands totally. Flossom flushable 17 to 18 rupees पे starting range start हो रहा है.
2: Very good. अच्छा है.
4: What is the current traction? If I may know, what's your current?
0: So last year we did about 75 lakhs gross. Our hero product will be launching in like funding plus 2 months. That's the timeline of launch. Like Flossom flushable launch होएगा wiring plus 2 months पे. तो उसके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। दिस AMJ में हमने क्रैक किया अराउंड 21 लाख्स।
4: अराउंड 21 लाख्स। व्हाट्स द आस्क? फंडिंग आस्क?
0: सो वी आर रेजिंग 12 करोड़ एंड 9 करोड़ कमिटेड। ड्यू डिलिजेंस हो चुका है। SHSSA इन प्रोसेस चल रहा है। सो रिमेनिंग
4: 3 करोड़ एंड व्हाट वैल्यूएशन?
0: 45 प्री मनी।
7: एस्ट्रो टॉक पे हमारे 8 से 10 करोड़ कस्टमर्स हैं, उसमें से 60% फीमेल्स हैं। तो मैं वहाँ पे भी आपको फ्री एक प्रमोशन दे सकता हूँ ऐप के अंदर, जहाँ पे सब फीमेल्स देख सकती हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और यूज करके देखेंगे। सारी पेइंग कस्टमर्स हैं तो आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा।
0: थैंक यू सो मच।
6: एंड आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट आल्सो। आई वुड लाइक टू पुट 3 CR।
0: ओह वाओ,
2: देयर यू गो, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज।
6: फाउंडर देख के सब कुछ होता है, बाकी सब तो
0: थैंक यू सो मच।
6: थैंक यू
2: सो मच। रियली कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आपको आपकी पार्टनरशिप का शुभारंभ पुनीत के हाथों हो चुका है एंड आई होप दैट दिस पार्टनरशिप एक्चुअली जस्ट ग्रोज मेनी फोल्ड्स इन द कमिंग टाइम।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: जीत, आपकी आपके फादर के साथ में रिलेशनशिप कैसी है? यू नो, वो गौतम अदानी जी हैं, तो वी आर ऑल वेरी क्यूरियस टू नो, आप सबसे छोटे बेटे हैं, आपके बॉस भी हैं और आपके फादर भी हैं, किस तरह की रिलेशनशिप है?
1: मोस्ट पीपल यू नो वर्किंग, वो घर जाते हैं तो यू नो दे आर रिलैक्सिंग. आई डोंट एवर गेट टाइम ऑफ.
0: नहीं, बट कभी डर तो लगता होगा, लाइक जनरली
1: ऑलवेज डर लगता है इसलिए.
0: तो लाइक सपोज करो आपको कोई दिमाग में आइडिया आया, यू वांट स्टार्ट समथिंग न्यू, आप कैसे पिच करते हो उनको?
1: तो अगर इफ देयर इज एनीथिंग न्यू दैट आई एम थिंकिंग ऑफ, इट्स नॉट दैट मैं पूरा सोच के आई एम फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा हूं. आई एक्चुअली बाउंस आइडियाज ऑफ हिम, ही गिव्स मी फीडबैक इन हिज ओन वे एंड देन यू नो वी वर्क ऑन इट एंड इटरेट.
0: आई थिंक दैट इज हाउ इट वर्क्स. और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था बिकॉज जो अगली जो इनोवेटर्स यहां पे आ रहे हैं वो भी एक पिता और बेटे की जोड़ी है.
2: वाओ,

0: Israel Painters. मेरा नाम जिग्नेश शाह है, मैं फ्रीडम बीज का फाउंडर हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम ध्वनित शाह है, मैं फ्रीडम बीज का को-फाउंडर हूँ।
0: सर, आज मैं मेरे एक दोस्त की बात करने आया हूँ जो बचपन से दिव्यांग था और व्हीलचेयर बाउंड था। उसकी प्रॉब्लम डिसेबिलिटी नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी डिपेंडेंसी। जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो 4 बार शिफ्ट होना है। उसके लिए उसको पेरेंट्स हो या फैमिली मेंबर्स को उसको उठा के बिठाना, व्हीलचेयर डिक्की में रखना, वो सभी प्रॉब्लम्स से वो इरिटेट होता था। मतलब कि किसी को तकलीफ देने का फील करता था, वो अवॉइड करता था। मुझे मिलता, मुझे बताता कि यार कुछ ऐसा जुगाड़ करो ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना हो। तो हमने ये बनाया एडप्टिव। ये टोटल इलेक्ट्रिक है और ये व्हीलचेयर बाउंड पीपल के लिए एक इंडिपेंडेंट मोबिलिटी है।

0: Wow, that's incredible.
1: तू आज निकल भाई, तू आज
0: amazing.
1: वाह.
2: तो जो दोस्त के बारे में बात करता था, वो आज आपके सामने है. ये adaptive vehicle जो हमारे invention है.
0: Amazing.
3: Vignesh भाई,
2: thank you very much.
3: Welcome वंदे भारतम के मंच पर and of course Dhwanit. वेलकम. जनरली जो हमारे जितने अवार्ड फंक्शन होते हैं, ग्लैमरस शो होते हैं, वहाँ पर हमारा हीरो एक मोटरसाइकिल के ऊपर आता है. यहाँ पर आपकी एंट्री बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं थी और आपकी जिंदगी में जो आप कर रहे हैं वो भी किसी हीरो से कम नहीं है.
2: जी सर, थैंक यू.
3: आप उम्मीद क्या करते हैं आपके सामने?
2: उम्मीद तो ये है सर कि हमारा जो व्हीलचेयर बाउंड कम्युनिटी है ना, उसके लिए जो बाजार में उपलब्ध साधन दो पहिए का स्कूटर होता है और एक ट्राइसाइकिल होती है. मेरा व्हीलचेयर लेके मुझे ट्राइसाइकिल में नहीं जा सकता, ना ही दो पहिए के स्कूटर पे जा. मुझे उठा के शिफ्ट करने के लिए भी दो बंदे चाहिए. तो ये पर्पस मेरा ये है कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो मैं डिग्निटी के साथ, आज आप नहीं मानोगे मैं रहता हूँ 15 किलोमीटर दूर यहाँ से, मैं ये लेके ही आया और एक आत्मविश्वास के साथ आया और आत्मनिर्भर बन के आया हूँ कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है. मेरी 10 साल की जो मेहनत है उसको एक एक मुकाम पे ले जाने के लिए आया हूँ.
3: ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ही की है?
4: सभी चीज हमारी है, सभी
2: चीज आपसे बनाया,
4: सब जीरो से
2: फैब्रिकेट,
4: बिल्कुल स्क्रैच है. और इसका ना ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, खुद ही से ये सब हमने धीमे धीमे करके असेंबल, मैन्युफैक्चरिंग. और जिसको आप ये जुगाड़ जैसा दिख रहा है कुछ, इसको जुगाड़ को अच्छे से शेप में लाने का हमने प्रयास किया.
3: ये जुगाड़ नहीं है, ये प्रोटोटाइप है बॉस.
4: यस, प्रोटोटाइप.
3: ये जुगाड़ नहीं है.
4: हम लोग सालों से
2: तो उसको जुगाड़ी.
0: यू नो, लास्ट ईयर एक बार मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो एक महीने तक आई वॉज ऑन द व्हील चेयर. जिस तरीके का आपको चैलेंजेस आते हैं वो आप तभी रियलाइज कर सकते हैं जब आप हैं. और आपने जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि यू फील वेरी कंस्ट्रिक्टेड कि आपको हमेशा लोगों की जरूरत है. और

0: इंडिया जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। हमारी रोड्स में खड्डे हैं, हमारे रैंप ऐसे हैं, तो हमें लोगों को साथ में लेके साथ में जाना पड़ता है। तो इसलिए इस स्पेस में हमें इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। एंड आपने जिस करेज से अपने प्रॉब्लम को अप्रोच किया है इन अ वे दैट यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग।
1: इग्नेश भाई, जय जिनेंद्र
2: भाई, जय जिनेंद्र,
1: कैन आई कम देयर एंड जस्ट ग्रीट यू?
2: या
1: आई थिंक फैंटास्टिक, आई एम रियली मूड। आई थिंक गुजराती होवानो મને આજે ગર્વ છે। આઈ થિંક વી આર ઓલ ડિસેબલ્ડ બાય અવર થિંકિંગ એન્ડ નોટ બાય આઈ થિંક ફિઝિકલ, બટ યોર પ્રોડ્યુ ક્રિએટેડ ઇઝ કમેન્ડેબલ। થેન્ક યુ સો મચ।
2: થેન્ક યુ વેરી મચ।
1: રાઈટ,
0: રાજીવ જૈસે આપને બોલા કે ઉન્હોને હીરો કે જૈસે એન્ટ્રી કી હે, ઉસી તરીકે સે હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ હીરો ફોર મેની પીપલ।
3: એક્ઝેક્ટલી,
0: ધેટ ઇઝ ઇન્સ્પિરેશનલ કી વી ગેટ ટુ વિટનેસ ધીસ ટુડે।
4: એક ચીજ જો આપને બતાઈ વિચ યુ નો ઓલવેઝ કનેક્ટ્સ વિથ મી ઇઝ કે कोई भी दिव्यांग जन होता है तो उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं है।
2: 100%
4: देखो, कभी किसी की सिंपैथी, उनको क्या चाहिए कि एम्पैथी चाहिए। डोंट लुक एट द डिसेबिलिटी, लुक एट द मैजिक ऑफ द एबिलिटी दैट दे हैव। और यू नो आपने जो बनाया है ये, इट्स रियली यू नो सीइंग यू, आपको जो फ्रीडम मिला है, आई होप के आप सैकड़ों सैकड़ों और लोगों को भी दे सको।
2: जी जी, थैंक यू। आज जो हम आने का मेरा मकसद मेन ये है कि इसको वैलिडेशन करवाना है। ये मुझे कल से बेचना या मार्केटिंग के लिए, उसके लिए नहीं आया हूँ सर। इसको वैलिडेट करवाना है, उसका एक पूरा एक रोड मैप है। आप जानते हो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, राइट? भले सोशल इम्पैक्ट का काम है, भले हमें एक आत्मनिर्भर बना रहे, पर ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये पूरा एक रोड मैप के लिए हमें एक्सपर्ट्स की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जितना स्केल है, इसका जितना स्केल है, ये यहाँ तक पहुँचा है। पर अभी हमें एक्सपर्ट्स का इनपुट चाहिए, हमें मेंटोरशिप ऐसी चाहिए कि हमें ये पूरा रोड मैप क्लियर करके, सभी माइलस्टोन क्लियर करके लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, तब जाके मेरे जैसे वो लोग भी आत्मनिर्भर होंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे।
4: आई कैन गो आउट ऑफ द वे, मैंने कहूँ चुकी हूँ, तुमने हेल्प करी, मेंटर करी, यू नो आई विल हेल्प यू फ्रॉम आवर साइड। आई थिंक वी शुड,
0: या वी शुड गिव वंदे विंग्स फॉर श्योर।
1: वंदे विंग्स तो बनता है।
4: काम करता रहो, एकदम बहुत अच्छा।
1: हमारे हमारे तुमने पगे लगवाने हैं। हां, फैंटास्टिक, इंस्पायरिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग।
2: जात से बात कर रहे किस
1: ये तो रियली रियली आई थिंक मैं आज सुधी स्टार्टअप फाउंडर तुम्हारे जो नहीं, जो है मेंटर तुम्हारे जो नहीं। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग व्हाट यू हैव आल्सो डन टू गिव अप योर करियर फॉर समथिंग दैट योर डैड बिलीव।
0: अगर हमारे पास बेस्ट सन अवार्ड होता तो वो डेफिनेटली आपके पास ही जाता।
1: फैंटास्टिक, रियली गुड।
0: इट्स अ टफ जर्नी बट यू बोथ हैव वेरी डन वेरी वेल।
4: मैंने फटाफट लाइसेंस कराई।
2: थैंक यू,
1: थैंक यू सर।

0: I'm just wondering actually, क्या स्कोर देंगे आप? 10 में से 11?
1: I think it's beyond scores.
0: It's beyond.
2: Yeah, yeah. This is going for sure.
0: आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सफर थमेगा नहीं। आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। फिर मिलेंगे भारत के नए कल में। आप

0: क्या क्या दिख रहा है?
1: ज्योति मुझे सब कुछ डिस्क्राइब कर रही है। तो मेरे सामने जीतदानी सर है और इधर उनके लेफ्ट में है पुनीत गुप्ता सर और अमन गुप्ता सर।
2: ये तो बहुत अलग है, ये तो मतलब इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।
3: यू आर लिटरली चेंजिंग लाइफ।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्टियल मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: Bade bade imtihano se guzarta hai, waqt tarashta hai jise, jo jaane kya kya na karta hai. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
11: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: पत्नी चली गई है।
1: More than 24 hours, the restoration work is still going on.
2: Health problems don't always come with a warning, and when they do, the
3: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
4: कुछ इससे भी अनोखा
3: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
6: देश का टायर जेके टायर
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: No matter what your day throws at you,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
2: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा।
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
5: देश का टायर जेके टायर।
0: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
4: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है. जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है. तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है. Across the country,
5: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change.

0: RSS Chief Mohan Bhagwat at that Madison Square Garden event, where he is going to address the crowd there. About 5,000 people are expected to be. We'll try and see if we can get some audio on that event of what is being said. Otherwise it's difficult to in fact understand what the conversation is going on at this moment. What we'll do, we'll come back to it once once Dr. Bhagwat starts speaking at this moment. We'll go back to New York. Let's move on now, ladies and gentlemen, to some other stories in this bulletin. A fresh political storm has erupted over controversial banter on Samir Raina's show India's Got Latent. The Bihari Kashmiri joke has triggered outrage, with many Kashmiri pundits slamming Samir Raina and political parties also calling for boycott. Now, during an episode of India's Got Latent, Samir Raina took a jibe at another comedian, Sharon Verma's Bihari background, saying she was from Bihar and had come to Mumbai in search of a job. A very Bihari thing, he said. Sharon hit back with a sharp dig at Raina's Kashmiri roots, saying that she had left her state by choice, insinuating that the Kashmiri pundits were driven out of Kashmir in the 1990s. Now, the Kashmiri Pandit community has hit out at Samir Raina, saying that such comedians mock a community that has faced worse circumstances, killed and chased out of their own homes. The BJP has hit out sharply. BJP MLA Ram Kadam has slammed the controversy, accusing comedians of deliberately offending people for publicity and fame.
1: And she's from Bihar. And she's so Bihari, she thinks Ebola means someone said something.
2: Samir is so Kashmiri, he loves getting stoned.
1: This is why you are the judge now, yaar. Kya baat? You know, Sharon Verma is a Bihari who came to Mumbai in search of a job. Just Bihari things.
2: At least I left my state by my choice.
1: क्या बात है यार, what a hilarious.
3: मैं समय और श्रवण मैडम को कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की बात उतनी ही करनी चाहिए जिससे उनको फायदे की बात हो, कहीं पत्थरबाज ना कहलाया जाए या उनको इस किस्म का एक्टिविस्ट ना कहा जाए. हम मेन स्ट्रीम के रहने वाले लोग हैं.
4: शो में ये जबान इस्तेमाल की गई है, ये निंदनीय है, ये काबिल एतराज है, ये किसी भी स्रोत में एक्सेप्ट नहीं है. देखिए, कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित सदियों से जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में रह रहा और इस तरह से पाकिस्तान की साजिश का शिकार हुआ, जानबूझकर उनको निकाला गया और एक खास सिस्टम यहां अडॉप्ट कराने की कोशिश की गई, उसका जो मारा कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीरी पंडित आज भी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है. और उसकी उस बेबसी और उसका जो पलायन हुआ, उस पलायन को फिर मजाक कहना या उस पर तनज करना, मैं नहीं समझता हूँ भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई एहतराम या रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है. जिसने भी ये वर्ड कहे, शरू ने जो वर्ड कहे, उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए.
5: अपने देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर, और जो लोग भी ये टिप्पणी करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं. हम लोग अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं और हमारे लिए राजा और रंक दोनों बराबर है, और जाति और पंथ के आधार पे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना.
6: ये इस तरीके से किसी कौम, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की को उपहास के तौर पर दर्शाना, ये निंदनीय है. आप अपने कॉमेडी के गुण का दुरुपयोग कर रहे हैं. कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए. कश्मीर के लोग हमारे सिरमौर हैं, हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति है, और तो आप उनका मजाक उड़ाएं तो ये उचित नहीं है.
7: देखिए, कुछ समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स करते हैं. उसके पीछे उनका मकसद केवल और केवल प्रसिद्धि पाना है. और अब हमें तय करना होगा कि सनातन हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के देवी देवता या कश्मीरी पंडित, ये सारे मजाक का विषय नहीं बन सकते. तुम पहले कुछ भी करोगे बाद में कहोगे मैं माफ़ी मांग रहे, उसके बीच में जो भी इन्हें पब्लिसिटी चाहिए फ्री में पूरे देश भर में मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक मंच से कड़ा शासन हो।
8: इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ मैन हु हिमसेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ एथनिक क्लींजिंग एंड जेनोसाइड ट्रिवलाइजेस द एथनिक क्लींजिंग ऑफ हिज कम्युनिटी। It is very unfortunate that he makes mockery of the hard-working people of this country, all for few eyeballs, few moments of fame, few likes. He has no business, Samay has no business to make mockery of the pain of the people who have been living in exile for the last 36 years. Who are still awaiting justice, who have been victim of genocide and ethnic cleansing.
0: Meanwhile, leader of opposition Rahul Gandhi has hit out at the BJP and the RSS over purification ritual conducted at a venue after Congress President Mallikarjun Kharge delivered his speech in Uttarakhand. Rahul Gandhi has demanded FIR to be registered under the SCST Act. He also targeted Prime Minister Modi over the issue, questioning the BJP's leadership response to the alleged ritual. He added, it is the duty of both the state and the central government to ensure that Kargeji receives justice in Uttarakhand.
9: जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SCST एक्ट में FIR दर्ज किया जाए।
10: उत्तराखंड की पुलिस उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार के दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, उसका उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है संविधान का। और जो SCST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें भी छुआछूत को बैन किया गया है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। और कानून कहता है कि अगर कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी सूचना पुलिस को अगर फ़ोन से भी मिल जाती है तो भी उसको मुकदमा तुरंत दर्ज कर देना चाहिए। तो अभी तक गूंगी बहरी बन के बैठी थी सरकार, और फिर उस शुद्धिकरण को जिस तरीके से बीजेपी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समर्थन दिया है, जायज ठहराया है, उसी हिसाब से उनके खिलाफ भी मुकदमा बनना चाहिए।
11: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को कि खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड बना दिया है, ये खड़गे जी इस बात को समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए।
12: जनता कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाहिर की कि किस तरीके से आज भी दलितों के साथ भेदभाव किए जाते हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी देने का काम किया। आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं।
13: मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है, और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
14: उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए, और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान।

0: था जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इसलिए बेवजह के मुद्दों को जो है वो आगे करके, आप लोग स्वयं हल्द्वानी के लोग हैं, आप लोग यहाँ के साक्षी हैं, उत्तराखंड में कौन इस बात को आज स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव होता है।
1: Sonia Gandhi's memoir Belonging has hit a major publishing hurdle, with Penguin India saying it will not publish the book. According to Congress sources, the objections centers on three sensitive themes: China's border incursions, Prime Minister Modi's policy, largely of how Sonia Gandhi viewed Modi coming to power since 2014 and onwards, and RSS political influence. Congress leader Ashok Gehlot has called the episode murder of democracy and questioned why the truth should be hidden from Indians. Official Kerala Congress and NSUI handles posted posters taking a dig at Penguin India, alleging that publisher caved under pressure. But Penguin has a different version, saying fact-checking is normal part of the publishing process and it remained willing and keen to publish the book. Meanwhile, the BJP has slammed the Congress party and has said that they are spreading false narrative.
2: Penguin India ने जिस प्रकार से अचानक ही एक ऑथर सोनिया जी, जिसका जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 10 नवंबर को वो प्रकाशित होगी पुस्तक, पूरे देश के अंदर एक इंतज़ार होने लग गया कब पुस्तक आएगी। अचानक ये खबर आई जिससे बहुत सबको धक्का लगा कि पेंजिन इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड वाइड, वो तैयार छापने के लिए पुस्तक को, तो क्या कारण है कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है वो इंडिया में छापने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनको दबाव है
3: के बीच में कहीं किसी तरह का अंतर विरोध हो? प्रकाशक का अपना प्रेरोगेटिव है, लेखक का अपना व्यू पॉइंट है, मुझे लगता है उसको राजनीति में लाने के बजाय प्रकाशक
4: देखिए, सोनिया जी द्वारा जो लिखा गया मेमोर है वो मेमोर है या फिक्शन है ये तो लेखक और प्रकाशक के बीच में जो है वो तय होगा, जो प्रिंटर है वो तय करेगा या जो राइटर है वो तय करेगा। अगर आप मेमोर के नाम पर फिक्शन है तो निश्चित तौर से जो है वो उस पर जो है वो उसको जो है प्रकाशक जो है वो देख करके उस पर तय करेगा। मुझे लगता है कि अगर आप संस्मरण के नाम पर जो है वो सियासी उसका सियासीकरण करेंगे तो कभी चाहे प्रकाशक हो चाहे पब्लिक हो सवाल तो करेगी।
5: कांग्रेस लीडर्स अटेम्प्टिंग टू स्पिन स्टोरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग अ फॉल्स नैरेटिव ऑफ फियर over the release of Shrimati Sonia Gandhi's memoir are not merely ironic, they are just glaringly hypocritical. Excerpts from the 2014 autobiography, One Life Is Not Enough, of late Shri K. Natwar Singh Ji, very clearly states how the Congress First Party was extremely uncomfortable and uneasy about his accounts of certain events which had happened in May 2004, just before the UPA government was sworn in. So much so that Shrimati Sonia Gandhi and Shrimati Priyanka Gandhi Vadra decided to meet Natwar Singh Ji and discuss with him about what he was going to write in the book.
1: A new controversy has erupted over BJP MPs visiting the residence of 1984 Sikh rights convict Sajjan Kumar following his death. Nitin Naveen, the party president, has summoned these MPs and told them that they should not have visited. Senior advocate and 1984 anti-Sikh rights petitioner H.S. Fulka has strongly condemned the visit by BJP MPs Kamaljeet Sehrawat, Rambir Singh Bhaturi and Joginder Chandolia. All three come from Delhi. Fulka says BJP has always supported the victims' fight for justice and questions the decision of the three MPs to offer condolences to Sajjan Kumar. He has also called for the boycott of the three MPs, saying sympathy should instead be reserved for the victims and their families.
6: क्योंकि फुलका जी ने कहा मैं भी उससे हामी भरता हूं क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था, हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है, तीनों की लोकसभा भी एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है, जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे, एक

0: conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर, जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली?
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: हाउ?
3: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
4: इट्स द माही वे।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आर्थर मसाला।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: There was this statement made by you that there was a major information sharing failure when it comes to China, and the death toll could have risen unbelievably. So, what was that information or warning that you were referring to that Nepal did not receive before 8:40 a.m. on August of 2026 to the 26th August?
1: This has like our speculation was based on the information sharing and the major hit by the avalanche or the flood in the border area. We could get very little time for the escaping. So this kind of speculation is still valid that there had been a chance that we could get more time to like what has happened in the upstream part. This level of information could have been shared, or it was been established a practice of sharing that information before this kind of situation has happened, because this is not the very first time that we experienced this glove related issues. Last year we also had a small scale, but something similar of nature happened. This time is huge. We cannot compare with the past records, but that would let us, the space, room for the preparedness in the upstream part.
2: NDTV has maximum reporters on the ground to get you the latest from the disaster hit Nepal. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue efforts. Take a look at some of these reports.
3: Apart from the relief operation which is being carried out by Nepal police, Nepal army or armed police force, the Nepal government have also set up medical camps at all the affected areas. And you can see here the paramedic staff, the doctors, they are here distributing free medicine to those who need. And the entire area, the people from this entire region, they are actually coming down for any medical assistance they need. And the four majorly affected, four severely affected their districts, all four districts have medical camps, similar medical camps like this. सर ये जो मेडिकल कैंप है ये आपने क्या मेडिकल कैंप लगाया
4: ये मेडिकल लिप इसलिए है कि आप प्रभावित एरिया है ना यहाँ पर खोला नाला है ना खोला है और यहाँ से प्रभावित एरिया पुल सब और सभी भत्का हुआ है इसलिए आप यहाँ पर अब इधर का आदमी उधर नहीं जा सकते इधर के आदमी उधर नहीं जा सकते इसलिए आपको लगभग लगभग आज तो क्लियर हुआ है रोड आज क्लियर हुआ है ना और लगभग लगभग आज सुबह से क्लियर हुआ है पहला तो लगभग आतरू जंगल सभी लोग ऐसा ही था जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ अब पर्यटक घूमने के लिए आए थे इन भारत से चाइना से है ना जहाँ से आए थे और इसी अब लगभग स्थानीय को भी और सभी को लेकर के भी हमने और
3: यहाँ पर किस तरह की बीमारी लोग के लोग
4: बीनामी और उसी तो बोले जैसे फीवर आया है ना खोखी आया है ना जुकाम आया है ना प्रेशर का आया अब प्रेशर कैसे का अब मुटु को बीनामी होता है इसलिए को अब कोई भी प्रभावित एरिया में अब हुआ है इसलिए अब कम से कम सहयोग दे पुर जा रहे हैं
3: Apart from the relief operation which is being carried out by Nepal police, Nepal army or armed police force, the Nepal government have also set up medical camps at all the affected areas. And you can see here the paramedic staff, the doctors, they are here distributing free medicine to those who need. And the entire area, the people from this entire region, they are actually coming down for any medical assistance they need. And the four majorly affected, four severely affected their districts, all four districts have medical camps, similar medical camps like this. सर ये जो मेडिकल कैंप है ये आपने क्या मेडिकल कैंप लगाया
4: ये मेडिकल लिप इसलिए है कि आप प्रभावित एरिया है ना यहाँ पर खोला नाला है ना खोला है और यहाँ से प्रभावित एरिया पुल सब और सभी भत्का हुआ है इसलिए आप यहाँ पर अब इधर का आदमी उधर नहीं जा सकते इधर के आदमी उधर नहीं जा सकते इसलिए आपको लगभग लगभग आज तो क्लियर हुआ है रोड आज क्लियर हुआ है ना और लगभग लगभग आज सुबह से क्लियर हुआ है पहला तो लगभग आतरू जंगल सभी लोग ऐसा ही था जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ अब पर्यटक घूमने के लिए आए थे इन भारत से चाइना से है ना जहाँ से आए थे और इसी अब लगभग स्थानीय को भी और सभी को लेकर के भी हमने और
3: यहाँ पर किस तरह की बीमारी लोग के लोग
4: बीनामी और उसी तो बोले जैसे फीवर आया है ना खोखी आया है ना जुकाम आया है ना

0: उन चीज़ों के दाम बढ़ना जो पब्लिक को रोज़मर्रा इस्तेमाल करनी है, उससे पूरा का पूरा मिडिल क्लास का बजट हिल गया है और सरकार उसकी तरफ दिख नहीं रही है। एक तो सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, मगर अगर आप सीएनजी इस्तेमाल करने वाले ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स से बात करोगे तो वो कहेंगे सीएनजी के अंदर भी ये कोई गैस मिला रहे हैं, बायोगैस मिला रहे हैं।
1: देखिए, पूरे दुनिया के जो अभी हालात हैं, हरमुज स्ट्रेट बंद है और अमेरिका और ईरान के बीच की जो तनातनी है उससे पूरे विश्व के बाज़ार पे असर होता है, उसका असर भारत पे भी होता है। और उसके जब सीएनजी की कमी होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ी कीमत बढ़ी है। जब ये सब नॉर्मल होगा तो कीमत घटेगी भी।
2: महंगाई का तो मर नहीं बोलने वाले हैं मोदी जी, जब विपक्ष में थे तभी महंगाई की बात करते थे, बिना वजह दाम बढ़ते जा रहे हैं और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और सरकार को अपने खजाना भरने के लिए, डीजल पेट्रोल से इतना कमाया उससे पेट नहीं भरा, सीएनजी से लूटेंगे और जनता के जेब पर डकैती है, इसको रोल बैक करना चाहिए। और जो भी एक बार बढ़ जाता है जिसका दाम, उसका कम नहीं होने का नाम लेता है। अब इस समय चीनी की आवश्यकता है, त्योहार पड़े हुए हैं, लेकिन चीनी का दाम आसमान में है, चीनी की कमी नहीं है, सरकार का सफलता है।
3: सो प्राइस हैज बिकम ए शॉकिंग रियलिटी इन आवर कंट्री, नॉट ओनली इन दिल्ली, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड अंडर बीजेपी रिशीम आई थिंक लाइफ हैज बिकम मिसेबल। दिस कैन बी टर्म्ड एज ए रक्षाबंधन टाइम गिफ्ट बाई द यूनियन गवर्नमेंट्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट्स। Yesterday we all celebrated Rakshabandhan in a bigger way, I mean the whole nation who believes in this, and this is a response of the government. So this is a gift by the government of India and Delhi government to the common man.
4: CNG prices once again rise, kg 3.89 rupees. It is not a single time, within the 7 or 8 months these are the third and fourth time the government using West Asia war to enhance the fuel rates, the petrol, diesel and LPG and now CNG. The international market now it is decreasing, but the government is increasing the rates, and also the government is not deciding, the oil company is not deciding according to the international prices.
5: All right, that's all the time that we have in this edition. News and updates will continue here on NDTV. Thank you so much for being with us.
6: Has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: 3 decades of watching the world.

0: Hello and welcome to Left, Right and Center. I'm Vishnu Shom. I'm in the Bidur area of Nepal, approximately 3 hours north of Kathmandu. This is the Trishuli River on my side. And what I'm sitting on is not the normal river bank. It's in fact dozens of feet of mud. The ground underneath me is soft. I've been able to get to this location by skipping across rocks, but it's stable enough. This entire mud field that I'm on didn't exist a couple of days back. But the volume of the river, the amount of the debris that actually rushed down this river is something which is truly astonishing. Well, this is Bidur, and this is essentially as far as we've been able to get for the last couple of days. You can see JCB machines over here, excavators also working. This is the main road. They've actually been able to clear out this stretch a little bit over the last 24 hours or so. But what we are going to be doing is actually heading to a military camp in the region, and that's where a lot of the families who are missing their near and dear ones are going to be. This is the one narrow path accessible to homes of people who survived here. Well, walking through this devastated town, we came across one family who were just sitting over here on the slope. You're just trying to understand, you know, what they've lost, if they can tell us anything. Namaste, bhai sahab. Aapka naam kya hai ji?
1: Naam mera bachchu Prasad.
0: Aur ye sab kaun hai?
1: Ye hamare family log hai, hamare patni hai, wo bachchi hai, mera bachcha hai.
0: Ji. Aur aapka makan yahan tha?
2: Hamare makan nahi, hum log kiraya par rehte tha, pasal tha hum log ko. 30 barsha se yahi par rehte the, hum log Bihar ke hai. Motihari jila ke hai hum log. 30 barsha se yahi par hai, pasal tha. क्वार्टर रूम लेके रहते थे फ्लैट में, कुछ भी नहीं बचे हैं हम लोग को।
3: भयानक काला धुआं टाइप का, कुछ पानी टाइप का बहुत आया। मेरे घर के पीछे एक घर था, वो घर मतलब टूट के गिर गया, तो मैं भागी छत पे से, देखी तो इतना बाढ़ आया, सब लोग इधर भागे हम लोग।
0: तो आप कहाँ रुका, आप सो कहाँ रहे?
2: हम लोग अभी पता नहीं है कि उस साथी लोग रूम देता है, कोई कोई यहाँ बुलाते है खाने के लिए, कोई वहाँ बुलाते है खाने के लिए, ऐसे ही गुजरान आज 4 दिन हो गया, ऐसे ही गुजरान कर रहे हैं सर।
0: Many of the families here remain completely cut off. Bridges have been destroyed. The only way of getting from one bank of the river to the other is by helicopter. Many of the people waiting here are waiting to register for a ride across. But amidst the chaos, we met a wife, a mother of three, waiting with her brother-in-law. She last spoke to her husband, an engineer, moments before terror struck. Spare a thought for those who have lost their near and dear ones. They have no idea about where the missing family members and friends are. We've got a group of people over here with faces. Madam, aapka naam kya hai ji?
4: Mera?
0: आपका नाम?
4: सविता श्रेष्ठ अधिकारी।
0: और ये कौन है?
4: ये मेरा श्रीमान।
0: आपका?
5: पतिदेव है।
0: आपका पतिदेव है। उनका नाम क्या है?
4: कृष्ण बहादुर अधिकारी।
0: और कहाँ थे वो?
4: ओ मोइलुंग आए हम किर अपर त्रिशूली 1216 भन्नु न हिंदी में।
5: ये अपर त्रिशूली 1216 का ये दुसान कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर था। ये टनल के मुंह पे सेफ्टी चेकिंग करने के लिए अंदर जा रहे थे। 2:14 तक हमारे साथ संपर्क में था, उसके बाद में हमारे साथ संपर्क में नहीं है, अभी तक इसका अता पता कुछ नहीं है।
0: तो आप अभी होप कर रहे हैं कि उनको मिले, उनके दोस्तों और भी लोग होंगे वहाँ?
5: हाँ, हम वही सोचते हैं कि हमारा आदमी है या नहीं है, लेकिन जो भी है उनको बचाया जाए। हो सकता है हमारा आदमी ना भी हो, तभी उसका दोस्त है, हमारा दूसरा बेटा है, भाई है, उन लोगों को भी बचाया जाए, जो कोई भी हो बचाया जाए वहाँ से।
0: आपके और भी लोग थे वहाँ?
5: हमारा तो एक ही भाई, यही भाई है, लेकिन और नेपाली हमारा अपना भाई है ना, और नेपाली हमारा अपना भाई है, ये है नहीं है, नहीं है, सबको बचाया जाए, जो बचा है उसको जिंदा लेके आया जाए।
0: But beyond connecting families and hopefully rescuing survivors, helicopters are the only way of traversing

0: कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की बात उतनी ही करनी चाहिए जिससे उनको फायदे की बात हो, कहीं पत्थरबाज ना कहलाया जाए या उनको इस किस्म का एक्टिविस्ट ना कहाया जाए। हम मेन स्ट्रीम के रहने वाले लोग हैं।
1: देखिए, कुछ समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझ करके इस प्रकार की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स करते हैं। उसके पीछे उनका मकसद केवल और केवल प्रसिद्धि पाना है। और अब हमें तय करना होगा कि सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता या कश्मीरी पंडित, ये सारे मजाक का विषय नहीं बन सकते। तुम पहले कुछ भी करोगे, बाद में कहोगे मैं माफ़ी मांग रहे, उसके बीच में जो भी इन्हें पब्लिसिटी चाहिए फ्री में पूरे देश भर में मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक मंच से एक कड़ा से कड़ा शासन हो।
2: इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ मैन हु हिमसेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ एथनिक क्लिनजिंग एंड जेनोसाइड ट्रिवलाइजेस द एथनिक क्लिनजिंग ऑफ हिज कम्युनिटी। It is very unfortunate that he makes mockery of the hard-working people of this country, all for few eyeballs, few moments of fame, few likes. He has no business. Samay has no business to make mockery of the pain of the people who have been living in exile for the last 36 years. Who are still awaiting justice, who have been victim of genocide and ethnic cleansing.
3: Moving on, there is a row that has erupted over BJP MPs visiting the residence of 1984 Sikh riots convict Sajjan Kumar following his death. Nitin Nabin has summoned these MPs and told them that they should not have visited. Senior advocate and 1984 petitioner H.S. Folka has strongly condemned the visit by BJP MPs Kamaljeet Sehrawat, Ramveer Singh Bhiduri and Yogendra Chandolia as well. Folka says that BJP has always supported the victims' fight for justice and questioned the decision of the three MPs to offer condolences to Sajjan Kumar. He has also called for a boycott of the three MPs, saying that sympathy should be there, instead be reserved for the victims and the families.
4: Sir, you've tweeted against the incident. You've even condemned the visit of the BJP leaders. If you could just walk us through your take on it.
5: You see, their action is against the party's line. Party's stand is very clear. Since last 42 years, since this massacre has happened, party has been supporting the victims, standing with the victims, demanding that the guilty should be punished and the victim should be given justice. Not only the BJP has been demanding it, but BJP actively participated in this fight for justice to the victims. I mean, my fight in 42 years, the BJP lawyers also appeared for the victims. Arun Jaitley ji appeared, Ravi Shankar Prasad appeared, and Madanlal Khurana, when he was the chief minister, he made me the advisor to the chief minister to advise him on these 84 cases. So BJP has been constantly been fighting for the justice to the victim and the guilty to be punished. Now these three MPs, their action is totally against the party lines, which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
6: Fulka ji ne kaha, main bhi usse हामी भरता हूं, क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था। हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए, क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है। तीनों की लोकसभा उन्हीं एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है, जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे। एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था। उम्र सजा उनको मिली हुई है।
7: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन एमपी कमलजीत सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया। उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी।
3: And well, that was all that we could pack in this edition.

0: between the Russian president and the Indian prime minister on NDTV. We'll keep the viewers updated on the latest, but the Uzbekistan visit of the prime minister has officially begun.
1: All right, Aditya, thank you very much for sharing those details with us. Aditya Rajkol there reporting live from Bishkek, where the prime minister will be headed to next for the SCO summit. All eyes will be on that. Aditya, thank you very much for the moment for joining us with those details. It's day four of the Nepal flood rescue. The death toll has crossed the 600 mark, with more than 300 Indians that are still missing. And amidst the third relief flight that's been sent by India to Nepal with 10 tons of aid, along with 11-member team of doctors and a tunnel rescue team that have already reached there. Now, as per reports, there are around 400 Indian tourists who are on the Chinese side in Tibet, and they are safe. Whereas there had been 152 Indian tourists who have crossed into Nepal. And amidst this, there are 21 tourists from Tamil Nadu who have returned to New Delhi, while the Tamil Nadu government has suggested that around 400 Tamil Nadu tourists which were in Nepal, of which 80 are still missing.
2: Apart from the relief operation which is being carried out by Nepal police, Nepal army or armed police force, the Nepal government have also set up medical camps at all the affected areas. And you can see here the paramedic staff, the doctors, they are here distributing free medicine to those who need, and the entire area, the people from this entire region, they are actually coming down for any medical assistance they need. And the four severely affected their districts, all four districts have medical camps, similar medical camps like this. Sir, ye jo medical camp hai, ye aapne kya medical camp lagaya?
3: ये मेडिकल लीप इसलिए है कि आप प्रभावित एरिया है ना, यहाँ पर खोला नाला है ना, खोला है और यहाँ से प्रभावित है पुल सब, और सभी भत्का हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर, अब इधर का आदमी उधर नहीं जा सकते, इधर के आदमी उधर नहीं जा सकते, इसलिए आपको लगभग आज तो क्लियर हुआ है, रोड आज क्लियर हुआ है ना, और लगभग आज सुबह से क्लियर हुआ है। पहला तो लगभग आतुर जगन सभी लोग ऐसा ही था, जहाँ जहाँ आप पर्यटक घूमने के लिए आए थे इन भारत से, चाइना से, है ना, जहाँ से आए थे, और इसी अब हम लोग स्थानीय को भी और सभी को लेकर के भी हमने, और
2: यहाँ पर किस तरह की बीमारी लोग के लोग
3: बिरामी, और उसी तो बोले जैसे फीवर आया है ना, खोखी आया है ना, जुखाम आया है ना, प्रेशर का आया, अब प्रेशर किसी का, अब मुटू को बीरामी होता है, इसलिए को अब कोई भी प्रभावित एरिया में अब हुआ है, तो इसलिए अब कम से कम सहयोग दे पुर जा रहे हैं।
2: From the relief operation which is being carried out by Nepal police, Nepal army or armed police force, the Nepal government have also set up medical camps at all the affected areas. And you can see here the paramedic staff, the doctors, they are here distributing free medicine to those who need, and the entire area, the people from this entire region, they are actually coming down for any medical assistance they need. And the four severely affected their districts, all four districts have medical camps, similar medical camps like this. Sir, ye jo medical camp hai, ye aapne kya medical camp lagaya?
3: Ye medical leap isliye hai ki aap prabhavit area hai na, yahan par khola nala hai na, khola hai aur yahan se prabhavit area pool sab, aur sabhi bhatka hua hai, isliye aap yahan par, ab idhar ka aadmi udhar nahi ja sakte, idhar ke aadmi udhar nahi ja sakte, isliye aapko lagbhag आज तो क्लियर हुआ है, रोड आज क्लियर हुआ है ना, और लगभग आज सुबह से क्लियर हुआ है। पहला तो लगभग आतुर जगन सभी लोग ऐसा ही था, जहाँ जहाँ आप पर्यटक घूमने के लिए आए थे इन भारत से, चाइना से, है ना, जहाँ से आए थे, और इसी, अब हम लोग स्थानीय को भी और सभी को लेकर के भी हमने, और
2: यहाँ पर किस तरह की बीमारी लोग के लोग
3: बिरामी, और उसी तो बोले जैसे फीवर आया है ना, खोखी आया है ना, जुखाम आया है ना, प्रेशर का आया, अब प्रेशर किसी का, अब मुटू को बीरामी होता है, इसलिए को अब कोई भी प्रभावित एरिया में अब हुआ है, तो इसलिए अब कम से कम सहयोग दे पुर जा रहे हैं।
2: सो वी आर एट फुरके खोला एट द त्रिशूली रिवर आउट हियर, एंड yesterday we showed how this entire area was completely evacuated. There was a biking going on. The Nepal police and the Nepal army jawans, they had advised people actually to vacate this entire area because of the fear of the another spell of flash flood. They are the local villagers out here who yesterday till whole night they spent the night on those hilltops. They vacated their homes because of the alert which was sounded by the local administration.
4: ये पुल से बहुत आदमी का फैमिली चलता था, क्योंकि ये पुल हमारा सदर मुकाम है, ये पुल में

0: के अंदर तीन सिखों के कत्ल किया था और सजा उनको मिली हुई है।
1: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन एमपी कमल जी सहरावत जी दूड़ी जी योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया, उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी।
2: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is ground report by my colleague Vishnu Som from flood ravaged Nepal.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait.

0: Sir, you've tweeted against the incident. You've even condemned the visit of the BJP leaders. If you could just walk us through your take on it.
1: You see, their action is against the party's line. Party's stand is very clear. Since last 42 years, since this massacre has happened, party has been supporting the victims, standing with the victims, demanding that the guilty should be punished and the victim should be given justice. Not only the BJP has been demanding it, but BJP actively participated in this fight for justice to the victims. I mean, my fight in 42 years, the BJP lawyers also appeared for the victims. Arun Jaitley ji appeared, Ravi Shankar Prasad appeared, and Madanlal Khurana, when he was the chief minister, he made me the advisor to the chief minister to advise him on these 84 cases. So BJP has been constantly been fighting for the justice to the victim and the guilty to be punished. Now these three MPs, their action is totally against the party lines, which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
2: Phulka ji ne kaha, main bhi usse हामी भरता हूं क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था. हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है. तीनों की लोकसभा ओनली एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे. एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था और सजा उनको मिली हुई है.
3: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन एमपी कमल जी, सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया. उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं. शर्म आनी चाहिए थी.
0: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is ground report by my colleague Vishnu Som from flood ravaged Nepal.

0: 42 years since this massacre has happened, party has been supporting the victims, standing with the victims, demanding that the guilty should be punished and the victim should be given justice. Not only the BJP has been demanding it, but BJP actively participated in this fight for justice to the victims. I mean, my fight in 42 years, the BJP lawyers also appeared for the victims. Arun Jaitley ji appeared, Ravi Shankar Prasad appeared, and Madanlal Khurana, when he was the chief minister, he made me the advisor to the chief minister to advise him on these 84 cases. So BJP has been constantly been fighting for the justice to the victim and the guilty to be punished. Now these three MPs, their action is totally against the party lines, which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
1: Phulka ji ne kaha, main bhi usse हामी भरता हूं क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था. हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्यान्वयन हुई है. तीनों की लोकसभा ओनली एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे. एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था और सजा उनको मिली हुई है.
2: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन एमपी कमल जी सहरावत जी दूड़ी जी योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया. उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं. शर्म आनी चाहिए थी.
3: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is ground report by my colleague Vishnu Som from flood ravaged Nepal.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.